Sumida, drumada la shobhini, suhasini, sumadhura bhashini.

नमस्कार, FM 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। इस समय दिन के 11:58 होने को है। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है एफ एम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं, आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रचार सभा की कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ।

ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Dilly is.
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर इन दो आवाजों का आप सुनते हैं रॉकी फिल्म से।

Allah.

कुर्बान आए रे न तेरे कुर्बान कजदा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले लिए मेरी जान।

वाला उस पर मोतियन की माला कुड़ते ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
3: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
3: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
3: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
3: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं।
3: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
3: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
3: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है।

0: है क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओं एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
0: उस समय वो हजारों कीटों कवकों पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओं एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है लेकिन मानो कहता है मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: हमारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास

बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार, गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने सुने सुने सुने सुने सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: अरे अरे भागो भागो जाओगे अरे भागो रे अरे सिपाही आ गए अरे अरे भागो चुप
1: बैठो अरे मैंने कुछ नहीं किया
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर बड़े चलो, बड़े चलो, सिकंदर बड़े चलो, बड़े चलो, सिकंदर बड़े चलो, बड़े चलो, सिकंदर बड़े चलो, बड़े चलो, सिकंदर बड़े चलो, बड़े चलो, सिकंदर बड़े चलो।
2: सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहे।

देते थे। अभिसार के राजकुमार आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
4: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए।
0: मैसिडोनिया चलो,
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
2: साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य।
5: धन्य हो,
4: धन्य हो,
5: धन्य हो।
6: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा,

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत

0: अब हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कृषि तथा उद्यानिकी विभाग ने 30 से अधिक एमओयू पर आज जयपुर में हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं और एग्री टेक कंपनियों के साथ किए गए हैं। विभाग के अनुसार इन समझौतों से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। विभिन्न संस्थाएं अपनी तकनीकी जानकारी और अनुभव के आधार पर विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी। इसके तहत प्राकृतिक और जैविक खेती, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग, किसान प्रशिक्षण, डिजिटल कृषि और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों तक योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक स्थिति और स्थानीय निकायों में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का आकलन करने के लिए आज से डिजिटल सर्वेक्षण किया जा रहा है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस राज्य व्यापी सर्वेक्षण के दौरान ओबीसी परिवारों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी स्थिति का वास्तविक अध्ययन किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में लगभग 51,000 प्रगणक नियुक्त किए हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सर्वे टीम और प्रगणकों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर आम जन के सुझाव लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनसुनवाई की जा रही है। इन जनसुनवाइयों के माध्यम से विभिन्न वर्गों से यूसीसी पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई की शुरुआत हुई। 2 दिन की इस जनसुनवाई में पहले दिन विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और अधिवक्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं कल आमजन अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उधर भरतपुर में भी संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही इस बैठक में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे अधिक 56 मिलीमीटर बारिश अजमेर जिले के केकड़ी में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारां के अंता, अलवर के बनसूर तथा चूरू के तारानगर रेणी क्षेत्र में भी अच्छी बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर बरसात की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर स्थानों पर मौसम के

0: शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला भी रखी गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इसके समाधान के लिए आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नया केंद्र अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का यही जैसलमेर केंद्र है। समय 101.8 MHz पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम मूमल।

मुमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी शीतल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिस विषय के लिए आज पूरे राजस्थान में हम लोग परेशान हो रहे हैं, जिस समस्या से, वो समस्या है बिजली की समस्या। देखा जाए तो पूरे राजस्थान में आप देखिए बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है और हम सब लोग जो बिजली की कटौती है और जो बिजली बार बार चली जाती है इस गर्मी में, उससे सभी लोग परेशान हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी, अगर हमें बिजली की बचत करनी है, बिजली के जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी बर्बादी को रोकना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का सीधा सीधा अर्थ यही होता है सखियों कि जो बिजली है, ईंधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको बर्बादी को हमें रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम सीमित ऊर्जा स्रोत है हमारे, ज़्यादा है भी नहीं। आप देखिए कोयला, पेट्रोलियम, ये इनको बचाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भी अब हमारे भारत में नहीं है, बहुत सीमित मात्रा में रह चुके हैं। और पर्यावरण को सुरक्षित करना, सबसे ज़्यादा जो है वो पर्यावरण को सुरक्षित करना। देखिए हमारे जब नाना दादा या हमारे जो पुराने पीढ़ी के लोग थे, वो हमेशा क्या कहते थे कि हमारे समय में तो हम लोग कोयले के ऊपर, मतलब लकड़ी के कंडों पे खाना बनाते थे, ये करते थे। लेकिन पहले के समय में जो धीरे धीरे आप देखिए समय बदला, लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है। आज लकड़ी के चूल्हों की जगह हमारे पास गैस सिलेंडर आ गया है। पहले लोग जो पैदल थे वो पैदल सफ़र करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इससे सफ़र करने लग गए हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल ज़्यादा होने लग गया है। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ सखियों कि जब ये सब चीज़ें हो रही है तो हम क्यों ना, मतलब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें ऊर्जा का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम भी हमारी भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनको ऊर्जा की निरंतरता बनाए रखने के लिए कह सकें। अब देखिए जैसे बिजली की बचत है, कमरे के बाहर अगर आप

चल रहे हैं, तो उस समय आप लाइट पंखे जो होते हैं, अन्य उपकरण जो होते हैं उनको बंद करके, पुराने और अधिक बिजली खाने वाले जो उपकरण हैं उनको भी आप हमेशा तो इसको बंद ही करिए। जब आप यूज़ करना चाहते हैं तब यूज़ कीजिए, उसके बाद बंद करिए। और बच्चों को भी जो है ना इन चीज़ों के बारे में सिखाइए, क्योंकि हम अगर हमारे बच्चों को अभी से इन चीज़ों के बारे में सिखाएंगे तो इससे उन्हीं को फ़ायदा होगा और वो हम जो बिजली है, जो ऊर्जा का संरक्षण है उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही साथ निजी वाहनों की बजाय अगर हम सार्वजनिक वाहनों में जाए, साइकिल पे जाए, या देखिए अगर आप कहीं बड़े शहर में रहते हैं और वहाँ पे जब ऑफिसों में एक सिस्टम होता है कारपूल का, कि अगर एक ही ऑफिस में पांच लोग रह रहे हैं, पांच लोग जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तो पांचों मिलके अगर एक कार बुक करवा लेते हैं ताकि रोज उन्हें लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन सब चीज़ों से क्या होगा, ईंधन की खपत जो होती है वो कम हो जाएगी हमारी, और आप देखिए आपका जो बजट है घर का उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फर्क दिखेगा। उसके साथ साथ जो है सखियों, अब जैसे हम खाना बनाती हैं गृहिणियाँ, तो खाना बनाते समय अगर हम थोड़ी सी गैस की बचत कर ले, कि ऐसी चीज़ों का कम इस्तेमाल करें गैस पर, जो बहुत ज़्यादा गैस इसमें यूज़ होती है, चीज़ों को सब्जियों को पहले हम बॉईल कर ले या बर्तनों को ढक के रखें। और अक्सर आपने देखा होगा घरों में पानी की, अभी तो राजस्थान में आप देखिए जैसलमेर के अंदर भी हमारे पानी की कितनी किल्लत हो रही है, तो पानी के जो नलों में जो लीकेज होता है उसको भी आप तुरंत ठीक करवाइए, पानी का स्टोरेज कीजिए। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, अगर हम इनको करने लगेंगे तो इससे क्या होगा ना सखियों, कि हम ऊर्जा संरक्षण की ओर अपनी एक कदम जो है हम बढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को भी इसके बारे में सिखाएंगे। उसके साथ ही साथ जो आजकल सौर ऊर्जा जो प्लांट्स लगने लग गए हैं आप उसका इस्तेमाल भी करिए, पवन ऊर्जा जैसे जो विकल्प है आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कीजिए, तो देखिए काफ़ी फायदा होगा आपके बजट, जो आपका जो घरेलू बजट आप बनाते हैं ना उसमें बिजली से जो रिलेटेड जो भी आप सामान मंगवा रहे हैं या बिजली के उपकरण मंगवा रहे हैं या बिजली का बिल भी भरवाते हैं या जो भी, आप अगर ये छोटे छोटे से उपाय अगर करने लग जाएंगे ना अपने घर में तो आप देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर हम हमारे बच्चों को भी ये चीज़ ऊर्जा संरक्षण के प्रति हम जागरूक करेंगे, उन्हें इसके बारे में समझाएंगे, तो उन्हें भी पता चलेगा कि जितनी हम मतलब बिजली कम यूज़ करेंगे या हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है जो ख़त्म हो रहे हैं उन्हें हम बचाएंगे तो आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। तो ये बात करी मैंने आज सखियों आपसे ऊर्जा संरक्षण की, कि किस तरीके से हम अपने मतलब घर की बिजली को, बिजली के संसाधनों को कम इस्तेमाल करके जब ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, और कुछ छोटे छोटे से उपाय चालू कर दें हम हमारे घर में आज से ही, या आप अपने आसपास ही इन चीज़ों के बारे में अपनी सखियों को बता सकती हैं कि ये सब करने से बहुत ज़्यादा हमें ही फ़ायदा होगा, और हमारे आने वाले बच्चों को ये ना कहे कि भारत में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा ना हो। तो अगर हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो शुरुआत हमें आज से ही करनी पड़ेगी। अब सखियों बातें तो आपसे बहुत कर ली, आइए आपको सुनाती हूँ एक प्यारा सा गीत और उसके बाद कुछ ज़रूरी संदेश।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों का ये प्यारा सा गीत। आइए अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले, आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो क्यों हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि ऊर्जा संरक्षण यानी कि हम बिजली के प्रचुर संसाधन हैं उनको कैसे बचाएं और उससे कैसे तरीके से हम धीरे मतलब घर पे भी हम ऐसे उपाय अपनाएं जिससे कि हमारी बिजली की बचत हो और ऊर्जा संरक्षण में हमारा एक सहयोग हो। अब जब बात करते हैं हम सखियों हमारी सखियों की हमारी गृहणियों की हमारी खुद की ऊर्जा की प्राण ऊर्जा की, तो आप देखिए आजकल क्या होता है ना कि अभी जो ऐसा समय चल रहा है कि हमारे पास इतने सारे संसाधन हो गए हैं घर के अंदर चीज़ों के लिए कि हम ज़्यादा हमें मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले के समय में क्या होता था कि आप देखिए पहले हर चीज़ के लिए अगर आपको कोई भी मसाला पीसना है तो उसे पत्थर पे सिलबट्टे पे पीसना पड़ता था, बट हमारी सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया तो अब मिक्सी आ गई है। आप पहले ठंडे पानी बाहर से पानी लाना पड़ता था, नदी तालाब जो वहाँ पे जलाशय थे गांव में आसपास वहाँ से सबको पानी भर के लाना पड़ता था, बट अब जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी हो गई जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़े तो अब हमारे घरों में नल भी हो गए हैं, साथ ही साथ जो मशीनों के जरिए हम हमारे जो घर के अंदर जो भी वाटर स्टोरेज के लिए हम जो टाका या स्टोरेज रखते हैं टंकियाँ उनको हम फुल कर देते हैं। तो पहले महिलाएं जो थी वो बहुत मेहनत का काम तो करती थी, आज भी महिलाएं मेहनत का काम करती है, ऐसा नहीं है कि इन सब उपकरणों ये सब उपकरण अपने आप ही चलने लग जाते हैं, इन सबका जो इस्तेमाल है वो महिलाओं को खुद को ही करना पड़ता है। लेकिन पहले क्या होता था सखियों की जब महिलाएं इतना सब काम करती थी तो चूँकि उनकी जो कहते हैं ना कि व्यायाम हुई योगा हुई वो उनकी अपने आप ही हो जाती थी ये कहा जाता था। लेकिन अभी हमारे क्या है हम लोग घर के अंदर दिन भर काम करते हुए खड़े रहते किचन में, किचन से हम बाहर जा ही नहीं पाते हैं और हम हमारे लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। तो जब हम सब सारा काम करते हैं जब सारी गृहणियाँ मैं भी हूँ आप भी है कई हमारी जो मेरी कार्यक्रम चल रही होगी सखियाँ जो आपने खुद ने नोटिस किया होगा हम लोग आजकल काम करने के बाद जब थोड़ी देर भी बैठते हैं तो हमारे शरीर में इतनी अजीब सी थकान होने लग जाती है और हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो एकदम लो हो जाता है, क्योंकि हम पहले के समय में महिलाएं इधर उधर आना जाना अप डाउन करती रहती थी तो उनके मतलब इतना एक्टिव रहती थी, बट अभी हम लोग उनसे ज़्यादा भी काम कर ले लेकिन वो एक ही जगह पे वहीं सीखती है वहीं सब कुछ है तो उसी जगह पे खड़े खड़े रहते हम लोग बहुत एनर्जी लो हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे खुद का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप खान पान के बारे में कहिए, आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए सखियों और उसमें जो है सुधार लाना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग हमारे बच्चों के लिए लंच बना रहे टिफिन बना रहे हैं ब्रेकफास्ट बना रहे घर के परिवार वालों के लिए हम ब्रेकफास्ट तक स्किप कर देती है, कई महिलाएं ऐसी होती है जो नाश्ता स्किप कर देती है कि हमें घर की साफ सफाई करनी है या खान दोपहर की तैयारी करनी है और लंच तक पहुँचते पहुँचते जब उनका खुद का लंच का टाइम होता है जो मोस्टली दोपहर का होता है वो शाम को 3-4 बजे अपना लंच कर रही है, इसका पूरा असर आपके ऊपर पड़ेगा सखियों। और जितना आपके ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ेगा आप अपने परिवार की जो है देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप दिन में कम से कम अपने लिए 15-20 मिनट निकालिए, ज़्यादा नहीं निकालने हैं पूरे दिन भर में, या तो आप सुबह निकालिए अगर आप सुबह का काम बहुत हेक्टिक होता है तो आप शाम को 5-6 या 5-7 के बीच में कभी भी अपने लिए सिर्फ 15 मिनट निकालिए और योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जो प्राणायाम होता है ना वो प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है सांस पर नियंत्रण कर सकते हैं, आपके शरीर में एक अलग ही तरीके की ऊर्जा होगी और अगर आपने उससे इसको बहुत अच्छे से अगर मान लो आपने इस्तेमाल किया प्राणायाम को आपने शुरू में आप थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए किसी विशेषज्ञ की सलाह से प्राणायाम कीजिए और जब धीरे धीरे आपको लगे कि आप करने में पूरे सक्षम हो चुके तो आप खुद स्टार्ट कीजिए। इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा आपकी जितनी भी थकान है सकते हैं वो दूर हो जाएगी और आप मानसिक और शारीरिक रूप से जो है आपको ऊर्जा मिलेगी। और इसके लिए क्या होता है ना कि आपको कुछ ऐसे प्राणायाम है जो मैं बताती हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिलेगी, बस कोशिश यही करनी है कि अपने आप को कम से कम 10-15 मिनट का समय देना है। शुरुआत जो है वो थोड़े से हल्के 5-2 मिनट के प्राणायाम से करनी है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, साथ ही साथ जब आप एक्सपर्ट किसी सलाह किसी विशेषज्ञ की सलाह में करें और आपको समझ में आ जाए तो आप इस प्राणायाम को और धीरे धीरे अपने हिसाब से इसका समय जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जिससे मिलती है और आपको जो मेंटली स्ट्रेस आपका

सखियों, वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, आपके शरीर में जो है ना एकदम तेजी से ऊर्जा का संचार होता है और शरीर में गर्मी और जितनी भी हमारी गर्मी होती है या हम लोग थक जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जो एनर्जी थक जाती है स्फूर्ति, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी जो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा, सुस्ती जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एक जगह बैठना है और उसके बाद उसको सुखा गहरी सांस लेनी है और पूरी ताकत से पहले आपको लेनी है और फिर छोड़नी है, एक साथ लेनी है और एक साथ छोड़नी है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और कोशिश कीजिए कि आप इसको अपने जीवन में चालू कीजिए। दूसरा होता है कपालभाति, जो आप लोगों ने मोस्टली कई सखियों ने अगर प्राणायाम योगा के तरफ से करती होगी तो उन्हें पता ही होगा, ये मानसिक जो रहता है ना आपका, जो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है, आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है और इससे आपके जो दिमाग तक ऊर्जा पहुँचेगी और साथ ही साथ ही वेट लॉस में भी बहुत अच्छा होता है। अगर कहीं कई बार गृहणियाँ हैं, अगर डिलीवरी के बाद आपका पेट बढ़ गया है या आपका मतलब एक एज के बाद महिलाओं का वजन देखिए बढ़ ही जाता है, तो आप इसको आप डेली करिए तो आपका जो पेट है उसमें भी आपको मतलब वजन में बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा। इसके साथ है अनुलोम विलोम, ये भी अनुलोम विलोम जो है ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर का जो एनर्जी लेवल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ता है और अनुलोम विलोम जो है ऊर्जा का जो हमारी बॉडी के अंदर का जो संचलन है उसको करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है ये प्राणायाम। और आप देखिए ये प्राणायाम भी बहुत ही ईजी है, अगर इसको बस आपको सीखने की ज़रूरत है। इसमें एक तरफ से नासिका के जरिए, नाक के जरिए हम लोग एक तरफ से पहले सांस को लेते हैं फिर दूसरे साइड से छोड़ते हैं, और मेरे ख्याल से कई सखियों ने तो ये प्राणायाम अपने घर में करती भी होंगी। और सबसे आखिरी प्राणायाम जो मैं आपको बताऊं वो है जो मानसिक शांति के लिए होता है, वो भ्रामरी प्राणायाम होता है। इसमें आपको कुछ नहीं, इससे जो मन का जो तनाव है वो आपका दूर हो जाएगा सखियों, और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो एकदम बहुत ज़्यादा वाला अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात आती है कि सखियाँ कई बार हम सोचती हैं कि प्राणायाम अब कभी भी कर सकते हैं, तो प्राणायाम के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दोपहर में बैठ के प्राणायाम कर लिया या आपने खाना खाने के बाद, ऐसा नहीं है। प्राणायाम हमेशा सुबह खाली पेट करिए, और अगर आपने खाना खा भी लिया है और अगर सोचिए अगर आपने आफ्टरनून का खाना खाया है अब हम कब प्राणायाम करें, तो आप उसके 3 से 4 घंटे बाद, जो मैंने आपको कहा शाम को 5 से 6 के बीच में आप प्राणायाम करेंगे वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। दिन भर में कभी भी 10 मिनट निकाल के प्राणायाम ना कीजिए, वो आपको कोई फायदा नहीं करेगा। या तो आप सुबह सुबह की जो एनर्जी होती है सूर्य जब उगता है उगते सूरज के समय आप प्राणायाम करेंगे आपको बहुत फायदा देगा। उसके साथ ही साथ अपनी क्षमता के अनुसार करिए, जरूरी नहीं है कि अब आपने अगर कहीं पे आपने देख लिया किसी प्राणायाम अनुलोम विलोम में एक बार की जोर से सांस खींचनी है तो आप अपनी ताकत से खींचे, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है जितना आप कर सकते हैं आप वैसे ही सांस को ऊपर लीजिए, सांस को बाहर निकालिए, अपनी ज़बरदस्ती की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि प्राणायाम में सांसों से ही ज़्यादा सांस के प्राणायाम होते हैं। और जितना हम ऐसा नहीं हो कि प्राणायाम के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ दें। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इसके लिए यही है कि आइए ताज़ी हवा में या एकदम शांत वातावरण में, तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह के 10 मिनट आप निकालिए, आप अपने घर की छत पर, अपने कमरे में, आपके कमरे में मान लो घर की छत नहीं है तो भी आप अभी कमरे में या खिड़कियाँ खोल के आप सुबह की ताज़ी हवा लेके एकदम शांत वातावरण में जब ये प्राणायाम करेंगी ना सकती, आपको अपने आप महीने 1.5 महीने में जो है फर्क नज़र आने लग जाएगा। तो सखियों ये तो थी आपके प्राणायाम, आपके स्वास्थ्य के बारे में बातें, प्राणायाम के बारे में बातें। और मुझे उम्मीद होगी कि जो जो सखियाँ आज मेरा कार्यक्रम सुन रही हैं वो अगर प्राणायाम करती होगी तो उन्हें पता होगा कि प्राणायाम करने के कितने फ़ायदे, और जो नहीं कर रही है प्राणायाम वो भी आज से मेरा कार्यक्रम और मेरी बातें सुन के प्राणायाम करना चालू कर देगी। अब सखियों योगा तो करते रहेंगे, आप लोग करिएगा अपने घर पे बैठ के, लेकिन अब मनोरंजन तो मैं आपका यहाँ से बैठ के करा सकती हूँ। तो आइए आप सखियों को सुनाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

सूरत है कितनी भोली, कोयल सी तेरी बोली।

बोली मैंने तेरे गजरारे होठ तेरे अंगारे तुझे

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे सुन बेटा का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण ने। आइए साथियों, सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सखियों, अब हम जिस हर बार हम इस कार्यक्रम के जरिए हमारे मेरी सखियों को हम कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जिन योजनाओं का जब सखियां लाभ लेती हैं तो खुद खुश होती है और उन्हें पता चलता है कि मतलब भारत सरकार ने उनके लिए, उनके परिवार के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की है। और ताकि और भी कई ऐसी सखियां हैं, सखियों जो ये कार्यक्रम अगर नहीं सुन रही है तो आप इस कार्यक्रम में अगर आप सुन रही है तो आप उन सखियों को इन योजनाओं के बारे में बताइए, ताकि वो भी इन योजनाओं का लाभ ले सके और इन योजनाओं से वंचित ना हो। तो अगर बात करूं मैं योजना की, तो आज मैं जिस योजना के बारे में बता रही हूँ वो हमारी बच्चियों के लिए, हम सखियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए सखियों, जब हमारे घर में एक बेटी का जन्म होता है ना, तो हम अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और ये बहुत बात सत्य भी है कि जब भी आप देखिए, आपके घर में जब भी किसी बेटी का जन्म होता है, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं, कई रुके काम भी पूरे हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि कई बार कई परिवार जो होते हैं जिनकी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं होती है, या आपने देखा होगा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो बेटियों के जन्म में मतलब एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि बेटियाँ हैं, बेटियाँ हमारे काम की नहीं है, तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए, इस जो रूढ़ीवादी प्रथा को दूर करने के लिए सरकार ने की बहुत ही अच्छी योजना चालू करी हमारी बच्चियों के लिए, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। आप इस योजना के द्वारा भारत सरकार जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो उन्हें हम पढ़ाना चाहते हैं, बट हमारी कई बार हमारी कई लोगों की आर्थिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ा सकें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है कि आप अपनी बच्ची को पढ़ा सकेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके के मतलब जैसा उनको आप भविष्य देना चाहते हैं वैसा भविष्य इसमें मिलेगा आपको। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको छोटी छोटी बचत करनी है, वो बचत जो आप हमेशा जब भी हमारे घर में बच्ची का जन्म होता है या बच्चे का भी जन्म होता है लड़के का, हम तभी से बचत गृहणियाँ चालू कर देती हैं। देखिए जैसे ही लड़की लक्ष्मी आती है तो बस यही रहता है कि अब इसको पढ़ाना है या इसकी शादी करनी है, इन सब चीज़ों को सोचते सोचते हर माँ बाप अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कुछ घर में छोटा छोटा बचत करता ही रहता है। तो वही बचत जो है सरकार के लिए कि आप अगर अपने घर में कर रहे हैं तो उससे आपको इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर वही बचत आप गवर्नमेंट की जो सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा के अपनी बच्ची का आप उसमें करेंगे, तो इससे आपको क्या है कि सिर्फ खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक आपको इसमें सखियों पैसे जमा करने होते हैं, जबकि ये जो खाता है वो 21 वर्षों में तो परिपक्व होगा जब आपकी बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी, लेकिन 15 वर्ष की आयु में अगर आपकी बच्ची कोई आगे की शिक्षा लेना चाहती है या आपको उस समय कुछ बच्ची के भविष्य के लिए कुछ पैसे मतलब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से जो जमा राशि है उसका कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर बेटी की 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई है, आपको उसकी शादी करनी है, तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं, या आपकी बच्ची 10वीं कक्षा में, जैसे मैंने कहा कि 15 साल में बच्ची 10वीं कक्षा में पहुंच जाती है 15-16 साल की उम्र में, अगर आपकी बच्ची ने 10वीं कक्षा बहुत ही अच्छी मतलब उत्तीर्ण कर ली है और आप चाहते हो कि हम इसे उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर भेजें, तो जो आपने जमा राशि करी है उसका 50% जो है वो आपको मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है और सबसे अच्छा मुझे इसमें यही लगता है कि एक तो वित्त जो साल भर का जो वर्ष होता है उसमें सिर्फ आपको न्यूनतम 250 रुपये ही जमा करने सकते हो। जो बचत हम घर में 250-250 रुपये जमा करते हैं तो भी वो उतनी हमारे बच्चों की शादी में या पढ़ाई के समय नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ कई बार क्या होता है हम पैसे तो इकट्ठे कर लेते हैं लेकिन घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई वो पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, फिर हमें वापस शुरू से करना पड़ता है, लेकिन अगर ये पैसे एक जगह पर स्थायी रहेंगे स्थिर रहेंगे तो

आपके काम आएंगे। तो न्यूनतम आप इसमें 250 रुपये तो आप जमा करवाइए अपनी बच्ची के नाम से, और अधिकतम से अधिकतम साल भर में आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक जमा करने हैं। तो ये बहुत ही है, और साथ ही साथ बच्ची के नाम से ही खाता खुलता है इसमें। आप माता पिता अभिभावक जो होते हैं वो कानूनी रूप से जब तक बच्ची 18 वर्ष की नहीं होती तब तक उस खाते का ध्यान रख सकते हैं, और अगर एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चियों के लिए खाता खुल सकता है तो। और लेकिन अगर मान लो बच्चियाँ जुड़वा है या अलग है तो उसके लिए सरकार ने भी कई छूट बीच में दी है। और इसके साथ जो मुझे सबसे अच्छी जो बात इसकी लगी है इस खाते योजना की, जो सखियाँ आप लोगों के लिए भी है, कि आप इसमें जो भी आप राशि निवेश करेंगे वो टैक्स फ्री होती है, उससे किसी भी तरीके का जो सरकार कर लेती है हमसे वो कर नहीं लिया जाएगा, ये कर मुक्त योजना है। तो मैं आप चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई छोटी बच्ची है जो अभी जिसकी उम्र 10 साल नहीं हुई है, 10 साल से कम उम्र की है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास के जो भी ई मित्र पे जाइए या SBI, ICIC, SDFC जो बैंक है ये वहाँ जाइए, या डाकघर में आप जाइए और डाकघर में भी खाता खुलता है, वहाँ जाके आप अपनी बच्ची का खाता खुलवाइए और अपनी बच्ची के भविष्य को जो है वो संरक्षित कीजिए, उसे सुरक्षित कीजिए। और 10 साल से अगर मान लो अभी बच्ची का आपके यहाँ जन्म हुआ ही है तो भी आप जाके खाता खुलवाइए, और भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सखियों ये बहुत ही अच्छी योजना है, और मैं उम्मीद करूंगी कि जो जो सखियाँ आज ये कार्यक्रम सुन रही है उनके घर में अगर बच्चियां हैं तो और उनका ये खाता नहीं खुला है तो इस योजना का लाभ लेकर वो खाता खुलवाएं। और इसके अलावा और भी जो आपके आसपास है जिनके घर में अभी बच्चियां का जन्म हुआ है या बच्चियां 10 साल के अंदर तक की है, क्योंकि इसमें अधिकतम आयु बच्ची की 10 साल होती है, 10 साल के बाद आप बच्ची का खाता नहीं खुलवा सकते, तो 10 साल के अंदर की अगर बच्चियाँ हैं और तो आप उनको ये बताइए, क्योंकि किसी भी वर्ग का आदमी जो है, किसी भी मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के आप व्यक्ति इसको अपनी बच्चियों का खाता इसमें खुलवा सकते हैं। बस यही है कि आपकी बच्ची की आयु 10 वर्ष से ज़्यादा ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी योजना थी सखियों, अब लेकिन अब इस योजना का तो लाभ आप लीजिएगा ही जाके, लेकिन साथ ही साथ अब आप कार्यक्रम सुन रहे तो इसका भी लाभ लीजिए और सुनिए एक और प्यारा सा गीत।

सखियों अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ हैं का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था उदित नारायण, कुमार शानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन ने। सखियों अब देखिए, गर्मी जो है वो धीरे धीरे जा रही है, लेकिन उमस तो है, अभी भी हमारे घरों में उमस है। और जब गर्मी जा रही है लेकिन बारिश और आंधी वो आ गई है। बारिश का मौसम कई जगह पे तो चालू भी हो चुका है, हमारे राजस्थान में भी धीरे धीरे बारिश आ रही है। जब बारिश आती है ना सखियों, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में तो आप देखिए कि जिस दिन भी आंधी आई, तूफान आया, तो आपका घर जो है वो एक रेगिस्तान, हर घर में रेगिस्तान जैसे रेत आने लग जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। दिन भर हम घर की साफ़ सफाई में गृहणियाँ जो है वो पूरी हो जाती है। और बारिश के मौसम में जितना मतलब लोगों के लिए बारिश का मौसम आया, हमारे लिए बहुत दुखदायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा बारिश का मौसम होने के बाद भी दिन भर हम दिन की साफ सफाई की वजह अचानक से आंधी तूफान और बारिश चालू हो जाती है, तो हमारे घर के अंदर है ना बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट आने लग जाती है, रेत आने लग जाती है, साफ़ सफाई में हमारा पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो मैं

आज आपको मौसम के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स दूंगी जिससे घर की सफाई करने पर उसमें एक तो ताजगी बनी रहेगी और साथ ही साथ जो मौसमी बीमारियां हैं या नमी के कारण जो है हमारे घर पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है किचन में या सामान में, उससे भी मतलब हमारा बचाव हो जाएगा। तो ये ऐसे टिप्स हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्या हो जाता है ना, मैं आपको बताऊँ, हर गृहिणी ये जानती होगी, मैं भी जानती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ, मानसून स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, हमारे घरों में सिलन हो जाती है और कीड़ों को रोकना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे गर्मियाँ चालू होती है तो हम धूल मिट्टी से तो वैसे परेशान होते ही हैं, लेकिन बारिश के मौसम में अब गर्मियों आंधी तूफान आ ही रहा है, अचानक से बारिश आ जाती है तो एकदम जो सिलन जो होती है उसमें कीड़े चालू हो जाते हैं, सिलन आने लग जाती है, सजीव की हर कमरे में स्मेल आने लग जाती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है ना सखियों, कि बारिश के मौसम में जब नमी के कारण हमारे घरों में फफूंदी आने लग गई, कीड़े मकोड़े आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं किचन में, परेशान भी हो जाती है कई बार, मैं भी कई बार सच में अपने घर पे जब घर का काम करती हूँ ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ, कैसे इन कीड़ों को हटाऊँ, कैसे बार बार सफाई करूँ, जबकि मैं हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि किचन की सफाई तो हम डेली करते ही हैं, लेकिन जो एक डीप किचन की सफाई होती है कि हम हमारे घरों के डब्बे वब्बे जो साफ़ करते हैं वो मैं हर हफ्ते करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नमी आ जाना या कीड़ों का आ जाना आ ही जाता है। इसके लिए क्या है कि आप लकड़ी के जो फर्नीचर है, जो भी आपका लकड़ी का फर्नीचर है, कोशिश कीजिए अगर आपके घर पे फर्नीचर नहीं बन रहा है और आपको अब अपने किचन में फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उनको दीवारों से कम 2-3 इंच की दूरी पर रखें और बाथरूम और किचन में एग्जॉस्ट फैन तो हमेशा लगा के रखना ही चाहिए और उसे हमेशा चला कर रखें। अगर हमारे घरों में एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था नहीं है, खिड़की है आपके बाथरूम के बाहर या किचन में, कई लोगों के घरों के आसपास किचन में खिड़कियाँ भी होती है तो उस खिड़की को तो आप 24 घंटे खोल के ही रखिए। भले आप ऐसा कीजिए कि ऐसा लगता हो कि भाई आपके किचन के दीवार से खिड़की से कोई जानवर या कोई अंदर आ सकता है तो उसमें एक बारीक सी नेट वाली जाली मार्केट में मिलती है, आप उसे लगाइए, उसको कोई खोल के एकदम से कोई जीव जंतु अंदर नहीं आ पाएगा तो उससे क्या होगा कि आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी किचन की और साथ ही साथ किचन जो है वो आपका हवादार भी बन जाएगा। उसके बाद फर्श और दीवारों पे जैसे कीड़े होते हैं तो हम देखिए फिनाइल का पोछा तो हम लगाते ही हैं, लेकिन फिनाइल के बाद भी कई बार फिनाइल का पोछा लगाने के बाद भी वो नहीं जाते हैं तो आप कोशिश में उसमें आप जो नमक होता है आप वो नमक उसमें डालिए, नमक का और फिनाइल का जब पोछा लगाते हैं और काली मिर्च का स्प्रे करते हैं तो आप देखिए जो कीड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। शाम के समय खिड़कियां दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए और हमेशा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हमें हमारे सिंक है, दरवाजों के जो कोने होते हैं जहाँ पे ये जो कीड़े कॉकरोच पनपते हैं इसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। हाँ कोशिश कीजिए डेली आप जब डेली की साफ़ सफाई करती हैं उसमें दरवाजे के कोनों को भी आप साफ़ कीजिए। तो अगर ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं बारिश के मौसम में, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगी तो इससे आपका घर साफ सुथरा भी होगा और आपको बहुत फायदा भी होगा। अब ये तो थी बारिश के मौसम की टिप्स, आइए आपको सुनाती हूँ एक जरूरी, आइए आप सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपके चेहरे को निखारने के लिए कुछ कारगर नुस्खे।

फिल्म चालवाज का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया था अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। अब सखियों, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं अपनी बातों को आगे भी जारी रख सकूं, तो जाते जाते छोटी सी आपको टिप्स दे देती हूं कि अगर आपने घर पे शहद और एलोवेरा जेल मिला के अपने चेहरे पे रोज लगाया तो आपके चेहरे पे एक अलग ही निखार आ जाएगा। और अब सखियों, अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी। कोशिश करती हूँ कि आपको मेरा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरी टिप्स से आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो अगले कार्यक्रम में आपसे सखियों पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

0: Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on EIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी।
3: With India playing hockey and the early Indian teams that came here 100 years ago.
2: 100 वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
0: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जुड़े

0: यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजरा सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyaya.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत बाय 2047. National integration, cooperative federalism, and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनाव का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपटे।

0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 1 महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बापे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार।

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के साथ। प्रसारण होगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम आशिक, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल,
1: इन लहरों पर मन मेरा गरम मचल मचल।
0: एक बात कहता

0: ले चलूं नदिया के पार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली।
4: एक बुत बनाऊंगा

रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के रंग वफा का मैं तेरी मूरत में भरूंगा अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूं।

मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा पाते, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें। मन मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा पाते, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें। दिल का हाल कहूंगा तुझसे मैं ना डरूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं जूझा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं जूझा करूंगा। बुत बना

0: करूंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, हर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा।
1: फिल्म रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन रचना शैलेंद्र की और धुन SN त्रिपाठी की।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड

0: पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहेगा।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का
0: जी,
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन है।
0: क्या बात है। आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी, घूमने कहीं चले जाए, और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए है?
1: जी जी।
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें याद है तो साझा कीजिए।
1: जी जी, मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ
0: जी,
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी,
1: पानी में, बारिश में, वहाँ पर
0: जी
1: जी, तो अच्छा लगता था। पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनाया जाए, आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: जैसे गगन से उतर के मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के
1: सब से छुपा के इधर उधर से मुझको ही दे।

0: हेलो सुहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं।

0: पिताजी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल
1: मेरे
0: करती
1: को
0: थी?
1: तो बारिश में भिगना और पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती है, ये इस बारे में कुछ बताइए
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है।
0: जी।
1: मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ, गुजरात
0: जी
1: की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात।
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 हो गई है।
0: जी तो
1: सबको हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को। कोई
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्यार करती
0: तो ये
1: हूँ।
0: बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं भी लखनऊ और बीच परी का गायन है।
0: जी बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत तराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरेवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी,
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं

0: बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बारिश में घर गंदा ना हो ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी?
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे, मेरा गांव सुल्तानपुर है
0: जी।
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे।
0: अच्छा,
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना, गृहिणी
1: बन ही जाता है।
0: जी, जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया, है ना,
1: कुछ भी बना। हाँ।
0: और मान लीजिए सूजी कम है, तब
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी, बहू, पोती पोती।
0: क्या बात है, भरा पूरा परिवार है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली
0: जी, स्वागत है।
1: नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियां हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है, इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है
0: जी।
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी के,
0: हाँ।
1: भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
0: जी। और
1: उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको
1: बारिश में? देखिए पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे।
0: सही बात है। और वो अगर
1: सारे में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए, बढ़िया बढ़िया, है ना? तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती
1: हैं? हाँ, तो बस से रात तक।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विभिन्न भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदन वार
0: जी जी,
1: उसमें जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात।
1: रामचरित मानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं, बताते हैं स्टोरी
0: जी,
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है,
1: क्योंकि वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।
0: सही बात है, उसकी विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के
0: जी,
1: और मैं सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: एक्चुअली ये पसंद मेरी मम्मी की है
0: जी।
1: स्वप्न झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक ठीक ठीक। तो प्रतिमा जी आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

हाँ धूप ढल गई हाँ जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई पात पात जल गए कि शाख शाख जल गई चाहतों निकल सके न।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से।
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे
0: जी,
1: अभी जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना आपने, कॉल लगाने की कोशिश करी और कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है
0: जी,
1: चारों तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
1: बहुत हो रही है। हम
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप साझा कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है
0: जी,
1: तो मैं वहाँ पे, हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़िया एक पास में जगह थी
0: जी,
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल
0: जी
1: पूरा, और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
1: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती
0: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
1: बस साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
0: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
1: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शो बरकरार है, मतलब बचपन की फ्रेंड अभी तक हम लोग सब ग्रुप है
0: जी,
1: तो हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं।
0: क्या
1: कभी
0: बात,
1: कभी कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है।
0: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है
0: जी,
1: तो म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ
0: जी,
1: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा एम्स था
0: जी,
1: है स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास में मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं
0: जी जी जी,
1: तो बहुत खेला, मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
0: जी
1: पूरा कॉलेज पूरा वो खेला।
0: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती है तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
1: और
0: में।
1: भी अच्छा लगता।
0: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
0: तो अंजू जी, आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ, पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं।
0: क्या बात है, तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है।
0: क्या बात है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाए, चलो सहेली
0: जी। तो हाँ, ये बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा देखना, ये सब, रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन है?
0: कला के फैन है, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ,
0: उसकी कोई सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो ये बताइए, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत, हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से, बिना सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है, ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है
0: जी जी जी
1: तो मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना,
0: जी
1: यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या पसंद है, क्या बनाए?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं।

0: और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
1: क्या बात है।
0: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए बैठे गप्पे मारे।
1: जी आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: एक मंदिर फिल्म का
1: जी,
0: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
1: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिल एक मंदिर का ये प्यारा संगीत।
0: प्यार में सारा आलम हमको बैठे,
1: क्या बात है। और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से। हाँ
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है, और सखी सहेली
0: जी
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ।
0: क्या बात है।
1: जी
0: अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है, और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें,
0: जी
1: घर पे रहें।
0: जी
1: हाँ,
0: और बारिश में क्या क्या चीजें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग

0: पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, बारिश आती है सबको पकौड़े याद आ जाते हैं। हाँ। ना मान लीजिए रसिका जी, हाँ। मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ हाँ। लगाती हैं कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
0: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े
1: जी,
0: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी।
1: अच्छा,
0: इस तरह और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
1: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन है?
0: परिवार में मेरी सास
1: जी,
0: नंदे
1: जी
0: और मेरे पति, एक बेटा,
1: भरा पूरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
0: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई
1: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दे, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए, फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867 0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 0।

दो दो। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है, तो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है, वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंची वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

0: कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।
1: इसी तरह उदास यश रोज वहां बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी

0: यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।
1: रुक जाना।

बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गई। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

0: जीते ना रहे बड़े
1: नहीं कहन बड़े
0: मोहे काहे चले
1: मोहे काहे चले
0: आहा देखे बिना तोहे काना जीते ना रहे बड़े
1: नहीं कहन बड़े।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हो भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ

0: समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा,
1: जिंदगी

लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहाँ से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अभी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थी। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गई, वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो ताकत कोई दिखलाए तो तूफान कोई मंडलाए तो मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो बरसे जाए अंबर से आग निपटे जाए पैरों से दाग बरसे जाए अंबर से आग

हिम्मत से जो कोई चले धरती हिले कदमों तले

मिलने धरती हिले कदमों तले तू चल योगी हम सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू चल योगी हम सुबह शाम

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता, कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था, उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता, फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहाँ कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहाँ की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूब कर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

के चेहरे है कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे है कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब

की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी।

शिकायत है मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे कभी मुझको शिकायत है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई

हर कदम एक नई जंग है जिंदगी, हर कदम एक नई जंग।

0: जिंदगी हर कदम एक नई जंगली जिंदगी हर कदम एक नई जंगली जिंदगी हर कदम एक नई
1: जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ पे है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

घायल पर जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तेरी चुनू की आगे अंबर पड़ा।

0: बादलों पकड़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता
1: इन मुट्ठियों में नाग तारे भर के आत्मा की हद से गुजर के हो जा तू।

मुझे पता है।

गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आप चर्चा करने जा रहे हैं वह है वर्षा जल संरक्षण। आप सभी को पता है अभी जो मौसम आने वाला है वह है बारिश का मौसम। लगभग स्टार्ट हो ही गया है, बट जैसे कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में अब इसकी एंट्री पूरी तरीके से अब होगी। तो वर्षा जल का उपयोग कैसे करना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, वर्षा जल संचयन के लिए हमें क्या करना है कि आपके सब मतलब जो छोटी से छोटी चीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि आपका जो घर है उसकी छतों पर गिरे पानी को पाइपों के जरिए भूमिगत टैंकों या सोख्ता गड्ढों में इकट्ठा किया जाना चाहिए। मतलब आपके जो छत है वहाँ से जो पाइपलाइन निकल रही है उसका एक पाइप निकाल के आपको इस जगह लेना है जहाँ पे एक छोटा सा भूमिगत टैंक बना हो, जिससे कि सारा जितना भी वर्षा का जल आता जाएगा वो सारा वहाँ इकट्ठा होता जाएगा। इसमें पानी को छानने यानी कि फिल्टर और फर्स्ट फ्लश छत की पहली बारिश का गंदा पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया शामिल होती है। इस तरीके से एक पूरा बना होता है वर्षा जल संचयन का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि उसमें जो पहला पानी आता है ना वो गंदा होता है, छत का भी गंदा पानी हो जाता है और बाकी सारा, तो वो सारा गंदा पानी निकाल देता है और पानी को फिल्टर भी कर देता है। सबसे आम और प्रभावी तरीका है कैचमेंट। छत के पानी को पाइपों की मदद से एक जगह इकट्ठा किया जाना चाहिए। छत की पहली बारिश में धूल मिट्टी होती है, इसके पानी को पाइप में लगे वॉल्व के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है ताकि पानी साफ टैंक पर जाए। पानी को साफ करने के लिए पाइप के निचले हिस्से में बजरी, रेत और चारकोल की परत लगाई जाती है। छने हुए पानी को बड़े भूमिगत टैंक या ड्रम में स्टोर किया जाता है। घर के खुले हिस्से में गड्ढा बनाकर उसे पत्थरों, ईंटों और रेत से भरकर भर दिया जाता है और पाइप के जरिए बारिश का अतिरिक्त पानी उस गड्ढे में जाता है और इसका जमीन के अंदर चला जाता है। सूखे हुए बोरवेल और कुओं में छत के पानी को फिल्टर करके डाला जाता है।

से आसपास का भूजल स्तर जो है वो ऊपर उठता है। खेतों के निचले हिस्से में तालाब बनाकर बारिश का पानी रोका जाता है, जिसका इस्तेमाल बाद में सिंचाई के लिए किया जाता है। ढलान वाले खेतों में छोटी छोटी मेड़ें बनाई जाती हैं, जिससे पानी बहकर बर्बाद नहीं होता, जमीन में नमी बनी रहती है। जो ये पानी होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचयन का, इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये जो है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें सारे उपयोगी मिनरल्स होते हैं जो पेड़ पौधों को हमें चाहिए होते हैं। इससे पानी जो व्यर्थ बहता है नाली में पूरा बह के सारा निकल जाता है, इससे अच्छा है कि हम उसको पूरा स्टोर कर लें, भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। भूजल के पुनर्भरण के लिए एकत्र करने की अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। यह जल संकट से निपटने का एक नया, सस्ता और टिकाऊ रास्ता है। मकान की छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप या नालियों के माध्यम से आप स्टोर करके रख सकते हैं, और यह जो प्रक्रिया है यह काफ़ी अच्छी है और सुलभ है। कि किस तरीके से ऐसा, इसके लिए कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको काम नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा इसके लिए पाइपलाइन और एक टैंक की व्यवस्था करनी होती है, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाए और काम हो जाए। वर्षा के जल को किसी मानव निर्मित आवाह क्षेत्र में एकत्र करने और उसे संचय करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। घर की छत पर, अहाते में, पहाड़ी के ढाल पर या कृत्रिम भूमि पर बने कृत्रिम तलों आदि में जल संचयन किया जा सकता है। अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए जल संचयन बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां वर्ष भर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होता। जल संचयन का मुख्य लाभ है कि यह सरल, सस्ती, दक्ष, पर्यावरण मित्र और टिकाऊ पद्धति है। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के जल स्तर का लगातार नीचे जाना है। इसके लिए अधिशेष मानसून अपवाह को बहकर सागर में मिल जाता है, उसका संचयन और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है, ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। अकेले भारत में ही विभाग भूजल भंडारण का आकलन एक कह सकते हैं कि 214 बिलियन घन मीटर के बराबर है। इस समस्या का समाधान जल संचय है, पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता, फसलों की सिंचाई के विकल्प। जल संचयन प्रणाली को विश्वव्यापी तौर पर अपनाया जा रहा है। जल संचयन प्रणाली उन स्थानों के लिए उचित है जहां वर्षा बहुत कम होती है। इस प्रणाली का खर्च बहुत ही कम, यानी कि कह सकते हैं ना के बराबर होता है, और उपयोग सबसे ज़्यादा है। जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र से वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है। दो तरह के गड्ढे बनाए जाते हैं, एक गड्ढा जिसमें दैनिक उपयोग के लिए जल संचय किया जाता है और दूसरे का सिंचाई के लिए। दैनिक उपयोग के लिए किए गए गड्ढे को सीमेंट और ईंट से निर्माण किया जाता है और इसकी गहराई लगभग 7 या 10 फीट रखी जाती है, और इन गड्ढों को नालियों द्वारा छत की नालियों और टोटियों से छोड़ दिया जाता है, जिससे वर्षा का जल सीधे इन गड्ढों में पहुंच सके। और दूसरे गड्ढों में ऐसे ही कच्चा रखा जाता है, जिससे जल से खेतों की सिंचाई कर सके। घर की छत से जमा किए गए पानी को तुरंत ही उपयोग में लाया जा सकता है। तो यह एक तरीका है जहां हम वर्षा के जल को संचय आसानी से कर सकते हैं और आसानी से भूजल स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं। जब राजस्थान जैसा जो शहर है, जो ये जगह है, हमारा राज्य राजस्थान, ये कहा जाता है कि बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पे, और हमारा जैसलमेर जिला ये तो बहुत ही कम वर्षा के लिए जाना जाता है, विख्यात है। तो हम अगर इस तरीके से जितनी भी बारिश हो रही है उसका पानी हम व्यर्थ ना बहने देकर अगर इस तरीके से उसका उपयोग करें, तो कुछ हद तक हम यहाँ की वनस्पति को, यानी कि यहाँ के पेड़ पौधों को एक जीवनदान दे सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा बहुत पानी में भी वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए चारों तरफ हरियाली कुछ हद तक हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। हमारा पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा, जल संचयन भी हो जाएगा, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी। साथियों, तो आशा करूंगी मैं कि जो आने वाली बारिश है उसमें आप इसी तरीके से कुछ करके बारिश के जल को संचय करके और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और सुगम्य बनाएंगे। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म दाग का ये गाना, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, चेहरा तेरा चेहरा। साथियों, मैं बात करना चाहूँगी आपसे यातायात नियमों के पालन के बारे में। यातायात नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं, परंतु करते नहीं हैं। जब हम अपनी बाइक चलाते हैं, जब अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो बस पता नहीं किसी धुन में रहते हैं, ये नहीं जानते कि हमारा थोड़ा सा भी अगर नज़र हटना किसी के लिए भी दुर्घटना साबित हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे लिए भी हो सकता है। तो आप सबसे गुजारिश है, खास करके मेरे युवा साथियों से, कि वह यातायात नियमों का पालन बहुत अच्छे से करें और हर उन चीज़ को अपनाएं जो यातायात से जुड़ी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी घर से निकले तो ये सोच के निकले कि घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, सब आपका वेट करते हैं और आपकी थोड़ी सी लापरवाही उनके लिए घातक साबित हो सकती है। यातायात नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना की संभावना भी कम होगी, जीवन भी सही सलामत रहेगा। तो आवश्यक है कि यातायात नियमों का पालन करें और वाहन को निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं। स्कूटर, मोटरसाइकिल पर चलते समय हमेशा हेलमेट पहनें। कार इत्यादि वाहनों को चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। यातायात के निर्देशों के अनुसार खुद और परिवार की सुरक्षा के साथ औरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। जुर्माने के डर से नियमों का पालन करने के बजाय अपने दिमाग से अपना कर्तव्य समझकर इसका पालन करें। यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हमें इन्हें जिम्मेदारी से अपनाना चाहिए। यातायात नियम सरकार ने अपने हिसाब से या अपने निजी लाभ को देखते हुए नहीं बनाए हैं, बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। जब सभी इन नियमों की पालना करेंगे तो स्वतः ही सड़क दुर्घटनाएं कम होगी। पुलिस अपनी मर्जी से किसी का चालान नहीं चाहती। जब नियमों की अवहेलना होती है तभी पुलिस को चालान के लिए बाध्य होना पड़ता है। नियमों की अवहेलना करने, यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वाहन चलाने वाले चालकों को चेताया जाता है कि अपनी कार्यप्रणाली को जल्द बदल दे, अन्यथा पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने भी नियमों की अवहेलना करने वालों के प्रति सख्त बरतते हुए चालान सीमा बढ़ा दी है। अब कोई बिना हेलमेट व लाइसेंस वाहन चालक पाया जाता है तो कम से कम 5,000 रुपये का चालान कटता है, शायद इसीलिए ताकि इस तरीके का अगर आपके ऊपर एक्शन होगा तो आप यातायात के नियमों का पालन अच्छे से करेंगे। यही सोचकर आप सभी जानते हैं कि यातायात के लिए सारे नियम अपनाने बहुत ज़रूरी हैं, कि हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है और वाहन की गति को 40 या 50 से ऊपर नहीं रखना है। और जब भी आप अपना वाहन चलाएं तो हमेशा जो उसके संकेत लगे होते हैं, यातायात की जो सड़क के किनारे जो संकेत लगे होते हैं, उनको अपनाते हुए आपको चलना है, जिससे कि आपका उसमें सहयोग हो सके। आपके लिए जो भी वहाँ पे लगे होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए लगे होते हैं, वो सभी आपको फॉलो करने हैं, आपकी सुरक्षा के लिए लगे हैं। आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो आपके लिए

फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमेशा ऐसा वाहन रास्ता चुनें जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है, और लोग वाहन अस्त व्यस्त तरीके से ना चलाएं। हमेशा ऐसी जगह पे चलें कि जहाँ पर वाहन की गति तेज ना हो, ठीक है। चालक नियमित रूप से सुरक्षा और सावधानियों की अनदेखी ना करे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से वे गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। हम सभी यातायात नियमों का पालन बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे सुरक्षित गति से गाड़ी चलानी, वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनानी, वाहनों को ओवरटेक न करना, सड़क पर नजर बनाए रखना, एक्सप्रेस वे पर रुके और पार्क न करना, सड़क के किनारे गाड़ी न चलाएं, ओवरटेकिंग लेन खुली रखें, एक्सप्रेस वे का एक तरफा यातायात हो, आने वाले ट्रैफिक जाम के बारे में अपने पीछे चल रहे ड्राइवर को चेतावनी दें, अपनी हेडलाइट की बीम के कोण के बारे में सावधान रहें और प्रस्थान से पहले अब अच्छी तरह जांच कर लें और समायोजन कर लें। किसी सड़क की अधिकतम गति उस सड़क के लिए निर्धारित गति सीमा होती है। सभी चालकों की गति सीमा के भीतर और सड़क यातायात की स्थिति के अनुसार वाहन चलाना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक चालक सड़क पर किसी भी प्रकार का खतरा पैदा न करने वाली सुरक्षित गति से वाहन चलाने के जिम्मेदार है और उसे कभी भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि गति सीमा पर वाहन चलाना सुरक्षित है। इसके अलावा मौसम की स्थिति, सड़क निर्माण कार्य और बहुत से कार्य हैं जिसमें वह पुलिस का सहयोग दे और अपनी गति को पूरी तरीके से सुरक्षित गति के अंदर ही चलाएं। अपनी निर्धारित गति सीमा से आप ऊपर नीचे ना हो और लोगों के लिए भी हमेशा इसी तरीके का कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट रखें कि पास में अगर आपकी कोई गाड़ी चल रही है आपकी वजह से उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप गलत तरीके से चला रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला तो सही चला रहा हो पर आपकी गलत तरीके से चलाने की वजह से तो हर्जाना उसको भुगतना पड़े। बहुत बार होता है कि हम अपनी स्पीड से अपने अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, कोई अचानक से गाड़ी या मोटरसाइकिल आई और उसने हमें जल्दी से ओवरटेक कर दिया और उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट थी। उसके चक्कर में हम क्या होता है थोड़े से घबरा जाते हैं, उस घबराहट के चक्कर में हमारी बैलेंस बिगड़ जाता है और हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो बंदा चला गया, ठीक है, बट प्रॉब्लम किसको ही, आपको। तो हमें न तो खुद को प्रॉब्लम पहुंचानी है और न ही हमारे किसी दोस्त को, क्योंकि सबकी ज़िंदगी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपके घर वाले आपका वेट कर रहे हैं तो ये भी मान के चलो कि जो सामने जो चल रहा है उसके घर वाले भी उसका ही वेट कर रहे होंगे। और हमेशा एक सुरक्षित वाहन गति सीमा और यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही गाड़ी चलाएं। अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो प्लीज़ घर से जल्दी निकलें, गाड़ी जल्दी ना चलाएं। गाड़ी जल्दी चलाने से ज़्यादा आप कितना जल्दी पहुंच पाओगे, सिर्फ एक या दो मिनट। अगर आप घर से 5 मिनट जल्दी निकल जाते हैं तो आपको 1-2 मिनट के चक्कर में अपनी स्पीड को फास्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे मेरी तरफ से आपके लिए। तो आशा करती हूँ हमारे युवा साथी जो बहुत से हैं गाड़ी की जो गति सीमा है उससे स्पीड में ही चलाते हैं, उससे जल्दी ही चलाते हैं, तो इस तरीके से ना करें। अपना भी ध्यान रखें और हमारे साथ वालों का भी ध्यान रखें। हमारी चर्चा आपके साथ ऐसे ही जारी रखेगी। आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में।

इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल, इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए ओए ओए ओए मेरा हुआ बुरा हाल, इश्क में एक पल।

एक पल की भी जुदाई लगती है एक साल, तेरी कसम तेरे प्यार में साल।

साथियों, हम बात कर रहे हैं आपसे संगत के असर के बारे में, जो कि हमारे लिए कह सकते हैं कि सब कुछ बदल देती है। अगर संगत अच्छी है तो आज अच्छा इंसान और अच्छा हो जाता है, और जो अपनी कह सकते हैं कि अच्छाई से निचले स्तर पर आ जाता है वह कुछ हद तक सही हो सकता है। संगत अर्थात दोस्ती, मित्रता और साथ। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र सभी में बदलाव आ जाते हैं। हमारी संगत का जीवन में बहुत गहरा असर है। इसलिए हमेशा से कहा जाता है कि अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, जिससे कि आप में हमेशा अच्छा ही आए, न कि बुराई। कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता रहता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है। मनुष्य का जीवन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। मूल रूप से मानव के विचारों, कार्यों और उनके संस्कार, वंश, परंपराएं ही दिशा देती है। संगति एक प्राणवायु है जिसके संसर्ग मात्र से मनुष्य सदाचरण का पालक बन जाता है, दयावान, विनम्र, परोपकारी एवं ज्ञानवान बन सकता है। एक संगति मनुष्य जीवन को इस तरीके से

पुकार देती है कि वह राजा से रंग और रंग से राजा बन सकता है। जो जैसी संगति करे तो तैसा ही फल पाए। जिस प्रकार पंछी स्वच्छंदता से कहीं भी उड़ चलता है, उसी प्रकार मनुष्य का जहाँ भी मन करता है वो वहीं उड़ जाता है, अर्थात चला जाता है। कहते हैं मनुष्य जहाँ जाता है वैसा ही परिणाम उसे मिलता है। जो जैसे संगत में रहता है उसी फल का भागी बनता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुरे लोगों के साथ बैठे हैं, उनकी बुराई जगत में सबको पता चल चुकी है और हमने उसमें कुछ भी बुरा नहीं किया, परंतु नाम हमारा भी आएगा क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो उस बुरी संगति में चाहे हमने उनका साथ दिया चाहे नहीं दिया, परंतु आप अगर उनके साथ रहते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, तो आपका नाम भी डेफिनेटली उसमें आएगा ही आएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें मान के चलनी होगी कि आप पर इस बुरी संगति का असर ना पड़े तो ज़्यादा ही अच्छा है। अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को इतना सुदृढ़ रखें कि दूसरों के आचरण और विचार आप पर प्रभाव न डाल सके। कविवर ने एक चीज कही है कि चंदन के वृक्ष का अगर हम उदाहरण लें कि चंदन के सुगंधमयी पेड़ से कई विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु उन सर्पों के लिपटने से चंदन के वृक्ष में विष व्याप्त नहीं होता, अर्थात फैलता नहीं है। सर्पों के विष का चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार बुरी संगति का असर भी उत्तम पुरुष पर नहीं पड़ता। तो हमेशा अपने आप से अपने विचारों को इतना दृढ़ रखें कि बुरी संगति का असर आपके ऊपर हो ही ना, और हो सके जितना ऐसे लोगों से दूर रहे जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनकी सोच अच्छी नहीं है। तो आप अपने आप ही एक अलग व्यक्तित्व साबित होंगे। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: रखना मेरी राह तक ना।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

साथियों, आप सुनते थे फिल्म गदर का ये गाना, हम जुदा हो गए, उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज़ में। और हम बात कर रहे हैं आपसे विचारों में उदारता के बारे में। हमने अभी आपसे बात किया था कि किस तरीके से संगत का असर पड़ता है और मनुष्य एक राजा से रंग और रंग से राजा किस तरीके से बन सकता है। किसी भी विषय पर संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर सोचना, यही है विचारों में उदारता। इसका मतलब है पूर्वाग्रहों को छोड़कर दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, नई विचारधाराओं का स्वागत करना और अपने विचारों में लचीलापन बनाए रखना। यह मानसिक शांति और बेहतर संबंधों की कुंजी है। विचारों में उदारता का विकास करने से न केवल व्यक्ति का खुद का दृष्टिकोण विकसित होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैलती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने में कुछ चरण मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले है सहानुभूति, एम्पैथी। दूसरों की परिस्थितियों को हमें समझना होगा, उनके नजरिए को

समझना होगा उनकी, कह सकते हैं कि उनकी परिस्थिति उस समय क्या रही होगी, उनको हमें समझना होगा। हर जिसके लिए बात करने से पहले हमें इन सब दृष्टिकोण को देखने के बाद में ही किसी के बारे में बात करनी होगी। एक हमेशा अपनी जो सोच है वो हमेशा सकारात्मक रखें, जिससे कि आप में ये चीज़ रहेगी कि आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचेंगे, दूसरों के लिए सुनना भी सोचें। किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले आप दूसरों की बात को पहले सुने कि वो क्या बोल रहा है, उसके बाद में आप अपनी बात को खुलकर बोलें। रचनात्मक आलोचना को सीखने के अवसर के रूप में व्यक्तिगत हमले के तौर पर आप हमेशा तैयार न रहें, दूसरे की बात को उतना ही तवज्जो दें जितना आप अपनी बात को दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके विचारों में अगर आती हैं तो आपके विचार उदार कहलाते हैं और आप एक सुलझे हुए व्यक्ति के समान माने जाते हैं। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आइए एक नज़र आज रात तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये थी एक नजर आज रात तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं रामचरित्रमानस गान।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगी। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे हरिओम सरन की आवाज में गाया ये प्यारा सा भक्ति संगीत। इसके साथ ही हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार स्टेट हुकअप, उसके बाद जिले की चिट्ठी, फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर।

0: नहीं मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को विशेष आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल, विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। ऑकलैंड पहुंचने पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस दौरे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। इससे पहले श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान खेल सहयोग के रोड मैप पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच कबड्डी, खो खो जैसे पारंपरिक खेलों और अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन मैचों और आयोजनों की मेजबानी के अवसरों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रोड मैप से साझा प्राथमिकताओं, संसाधनों और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान होगी, जिसका दोनों देशों को फायदा होगा।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इसके तहत उच्च अल्कोहल मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने की कवायद की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल वाली दवाओं के लिए मौजूदा छूट खत्म कर दी है। मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट नहीं मिलेगी। इन्हें अब औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत आवश्यक लाइसेंस लेना होगा। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इससे कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि बूंदी और केशोराय पाटन क्षेत्र के किसानों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर नहरों में पानी की कमी और फसलों को नुकसान की आशंका पर चिंता जताई थी। श्री बिरला ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकाला। बांध से कुल 6000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर सहमति बनी है। मीडिया से बातचीत में श्री बिरला ने बताया कि इससे करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के किसानों को फायदा पहुंचेगा।
2: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर आना और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद जब राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वह गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसानों के खेत तक पानी पहुँच सके। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज होता है कि LMC RMC में पानी शुरू हो जाएगा।
0: यमुना जल हस्तांतरण परियोजना की DPR की पहली समीक्षा बैठक आज जयपुर में हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अगुवाई में हुई इस बैठक में विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर चर्चा की गई। और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी रामनाथ मीना।
3: परियोजना के तहत अग्निकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से के यमुना के पानी को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए चूरू के आशावास पहुंचाने की समीक्षा की गई। इसके लिए पाइपलाइन प्रणाली 386 MCH क्षमता के विशाल जलाशय और अन्य बिंदुओं पर मंथन हुआ। साथ ही रेणुकाजी, लखवार और किसाऊ बांधों की प्रगति, राजस्थान के हिस्से का पानी और लागत भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि 34,102 करोड़ रुपए की संयुक्त DPR केंद्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है।
0: मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा बैठक की। इसमें PM सूर्य घर योजना, PM कुसुम और ULA मॉडल की प्रगति पर जोर दिया गया। यूएलए मॉडल के जरिए 3 लाख घरों में 303

0: 330 मेगावाट रूफ टॉप सोलर क्षमता स्थापित की जाएगी। बैठक में ये भी बताया गया कि राज्य के 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS स्थापित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 15 जुलाई को विधानसभा में होने वाले इस अमृत महोत्सव में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन भी शिरकत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की ओर से होने वाले इस आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी संबोधन होगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर विधायक गौरव यात्रा रखी गई है जिसमें वर्तमान और पूर्व विधायकों का समागम होगा।
1: ये हमारे विधायकों का समागम, पूर्व वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है, वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से 4 बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए, उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता ये दो सत्र और है जिससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभाओं ने पारित किए उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में हो।
0: इस सम्मेलन में विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि सत्र के लिए तय कामकाज की समीक्षा की गई और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विश्व जनसंख्या दिवस कल मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और लैंगिक समानता तथा जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से इस मौके पर विशेष जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें छोटा परिवार, खुशहाल परिवार और बच्चों में सही अंतराल रखने के साधनों की जानकारी दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों, NCC और युवा क्लबों के सहयोग से जागरूकता रैलियां भी निकाली जाएंगी। साथ ही आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर संपर्क और परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। इस बीच जनसंख्या स्थायित्व में बांसवाड़ा जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा ने बताया कि लगातार तीसरी बार जिले को ये उपलब्धि हासिल हुई है। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की है। इसके तहत उद्योग, व्यापार, निर्यात, स्टार्टअप्स, पर्यटन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले 100 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इसके लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनी गई प्रतिभाओं को 100 आइकन्स कंपेंडियम में स्थान दिया जाएगा, साथ ही उनकी उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रीगंगानगर के नेतेवाला के पास एक सड़क हादसे में आज 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि दुर्घटना कार, ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश भर में मॉनसून की रफ्तार आज से धीमी होने के आसार हैं। इससे अधिकतर स्थानों पर बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। हालांकि पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लगभग एक सप्ताह तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की आशंका है। इस दौरान कहीं कहीं छुटपुट वर्षा का पूर्वानुमान है। इस बीच हनुमानगढ़ जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उधर पाली में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही और धूप छांव का असर रहा। वहीं बाड़मेर में धूल भरी आंधी चली। सवाई माधोपुर सहित कई जगह उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। कोटा के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का पांचवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। रानपुर स्थित संस्थान के परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को देश को विकसित बनाने के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध से कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 जुलाई को विशेष आयोजन। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कल, विशेष जन जागरूकता सप्ताह शुरू होगा। और प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, करीब एक सप्ताह तक बारिश की गतिविधियों के कमजोर रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। बीते दिनों जोधपुर को एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन की सौगात मिली। 37 एकड़ में बने इस आधुनिक टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रियों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। ये टर्मिनल भवन 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संशोधित उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से छोटे शहरों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा और पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस नए टर्मिनल भवन के बनने से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसायियों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल पर प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। अगले दिन वे वापस आए और भाटी चौराहे पर आम जन के साथ चाय पी और स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद किया और इसके बाद UPI से भुगतान कर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में विभिन्न विभागों में चयनित 1795 नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 15 से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने 20 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। महिला यात्राओं की सुविधा के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर वात्सल्य कक्ष भी बनाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के बढ़ते विद्युतीकरण से पिछले 2 वर्षों में 2,84,00,000 लीटर डीजल की बचत हुई है। वर्तमान में अधिकांश ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजनों से हो रहा है, जिससे प्रदूषण और परिचालन लागत दोनों में कमी आई है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में भी उत्तर पश्चिम रेलवे को देश में दूसरा स्थान मिला है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में नव लोकार्पित सेंटर फॉर डेवलपमेंट रेल कर्मियों और अधिकारियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। DRM अनुराग त्रिपाठी की पहल पर बनाए गए इस वातानुकूलित केंद्र में प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, शोध, व्यक्तित्व विकास और नवाचार के कार्यक्रम होंगे। यहाँ डिजिटल म्यूजियम, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स अरीना, डिजिटल वॉल और कैफे कॉर्नर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर जोधपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की जानकारी आम जन को दी गई। IIT जोधपुर के 2 वैज्ञानिक यूरोप स्थित CERN की एटलस परियोजना से जुड़कर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के आंकड़ों पर मशीन लर्निंग आधारित शोध करेंगे

0: ब्रह्मांड की संरचना, कणों के गुण और नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। केंद्र निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने इसे संस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। एमबीएम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एआई पर आधारित एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जो मिर्गी के दौरे से पहले चेतावनी देने में सक्षम है। भविष्य में इस तकनीक पर आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित करने की योजना है। वहीं आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता नई पीढ़ी के बायो मार्कर्स भी विकसित कर रहे हैं, जिनसे उपचार शुरू होने से पहले ही कीमोथेरेपी की प्रभावशीलता का अनुमान लगाया जा सकेगा। शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर, फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे कैंसर उपचार अधिक सटीक, व्यक्तिगत और प्रभावी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किए गए। जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने योग कर नियमित जीवन में योग अपनाने का संदेश दिया। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरा मत है। दोनों देशों बीच कारोबार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करण मत चर्चा करी जावेला। मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने पाणत सारू पानी मिलेला। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भेवन रा सिलसिला माय 15 जुलाई ने खास आयोजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने शिरकत करेला। विश्व जनसंख्या दिवस काल मनायो जावेला। जन जागरूकता सप्ताह शुरू हैला। प्रदेश में चौमासारी बिरखा सुस्त पड़ी। करीब एक सप्ताह ताई बिरखा कम है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों रा दौरा रा आखिरी चरण में आज न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पुग्या। न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन श्री मोदी री अगवानी किन्नी। प्रधानमंत्री मोदी रा ई दौराऊ भारत और न्यूजीलैंड बीच आपसी रिश्ता, कारोबार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत बनेला। इनु पहले श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया रा दौरा री बगत खेल सहयोग रा रोड मैप रा बारा में चर्चा किन्नी। रोड मैप रा तहत दोनों देशों बीच कबड्डी और खो खो सरीखा पारंपरिक खेलना समेत न्यारा न्यारा खेलना न बधावो देवन सारू प्रदर्शन मैच और आयोजना री मेजबानी रा मौका री ठा करी जावेला। प्रधानमंत्री मोदी कहो कि इनु भेड़ी प्राथमिकतावां, साधन और सहयोग रा हलका ने पिछाण करी जावेला, जिनु दोनों देशों ने फायदो मिलेला।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
1: मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ राजस्थान माए पाणत सारू पानी छोड़ो जावेला। इनु कोटा बूंदी हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला। ध्यानजोग है कि बूंदी और केशोराय पाटन हलका रा किसान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उम्मीलर नहरा माए पानी री कमी और साखा ने नुकसान री शंका जताई ही। चिंपा छे श्री बिरला राजस्थान और मध्य प्रदेश रा अहलकाराओं बातचीत कर जरूरी हुक्म दीना। ई बंधाऊ 6000 क्यूसेक पानी छोड़न माथे एक राय बनी है। शुरुआती दौर में 200-300 क्यूसेक पानी छोड़ो जावेला। इनु करीब 2.25 लाख हेक्टेयर कमांड हलका रा किसाना ने फायदो मिलेला।
3: पानी गांधी सागर से राणा प्रताप सागर आना और राणा प्रताप सागर में पानी कम होने के कारण नहरों को छोड़ा जाना संभव नहीं था। गांधी सागर से पानी छोड़ने के बाद जब राणा सागर पानी आएगा तब नहरों में पानी आएगा। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, वहाँ के मंत्री से कहा कि वह गांधी सागर में पानी राणा प्रताप को दे ताकि हमारे इलाके के किसान किसानों की खेत तक पानी पहुंच सके। वहाँ की सरकार ने सिद्धांत सहमति दे दी है और आज होता है कि LMC RMC में पानी

0: हो जाएगा।
1: जयपुर में आज यमुना जल हस्तांतरण परियोजना री डीपीआर री पहली समीक्षा बैठक रखी जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत में हुई मीटिंग में न्यारा न्यारा तकनीकी और माली पहलुआ ने बारा में चर्चा करी जी। इन परियोजना रा तहत हथिनी कुंड बैराज राजस्थान री पांती रो यमुना नदी रो पानी जमी हेठे पाइप लेन रे जरिए चूरू जिला रा हासियावास ताई पोगावन रा काम रो जायजो लियो छो। इन सारू पाइपलाइन सिस्टम 386 MCX बुतारा जलाशय और दूजा मुद्दा माथे विचार करी चियो। इस आगे रेणुका जी लखवार और किशाऊ बंधाना काम राजस्थान रे पांतीरा पानी और खर्च माए भागीदारी रे बारा माए विचार करी चियो। मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग री पीएम सूर्य घर योजना पीएम कुसुम और यूएएल मॉडल से रिखी खास योजनावा रोई जायजो लीनो। यूएलए मॉडल रे जरिए 3,00,000 घरां री छत माथे सूरज री रोशनी 330 मेगावाट बिजली बनावण री मशीना लगाई चावेला। मीटिंग में बताई चियो कि राज्य रा 172 ग्रिड सब स्टेशन माथे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS लगाया चावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत है समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भवन रा सिलसिला में 15 जुलाई ने खास कार्यक्रम रखो जावेला। विधानसभा भवन में रखा जावन वाला ई अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने शामिल फैला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज जयपुर में खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे बतायो कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ री राजस्थान शाखा री ओर रखा जावन वाला ई आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाई विचार बतावेला। श्री देवनानी बतायो के ई मौके विधायी गौरव यात्राई राखी जावेला जिनमाए मौजूदा और पहली वाला विधायक शामिल भेला।
2: ये हमारे विधायकों का समागम पूर्व वर्तमान का ये समागम का कार्यक्रम है। वह 15 जुलाई को प्रारंभ होगा और इसमें दो बातें जो विशेष हैं, एक तो हम अतीत का संस्मरण भी करेंगे और भविष्य के विधायी मार्ग का भी उसमें चर्चा होगी। इस दृष्टि से 4 बड़े कार्यक्रम इस वर्ष भर में विचार किए, उसमें से पहला कार्यक्रम हम आगामी 15 जुलाई को इसी विधानसभा परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद विशेषता ये है, दो सत्र और हैं जिससे 75 साल के अंदर जो हमने कानून इस विधानसभा ने पारित किए उसमें से जो प्रमुख रहे हैं उसके बारे में जानकारी और चर्चा उन सत्रों में होगी।
1: सम्मेलन में विधायी परंपरावा सदन री गरिमा संसदीय अनुभव चुनौतियां समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज संसद भवन परिसर में मानसून सत्र री तैयारियां रो जायजो लीनो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई 13 अगस्त तई चालेला। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए मेघवाल बतायो कि सत्र शुरू ते कामकाज रो जायजो लियो चियो और जरूरी हुकम दिया चिया। काल विश्व जनसंख्या दिवस मनायो जावेला। इन रो मकसद परिवार नियोजन मातृ स्वास्थ्य लैंगिक बराबरी और जनसंख्याओं जुड़िया मुद्दा न बारा माय चाक चकावनो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार री ओर इमौके खास कार्यक्रम रखा जावेला। आखर राज्य में काल 18 जुलाई ताई जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनायो जावेला। इन तहत नाना और खुशहाल परिवार और बच्चा बीच सही आंतरो राखण सारू जरूरी साधना री जानकारी दी जावेला। स्कूल कॉलेज NCC और युवा क्लबा की मदद जागरूकता रैलियां निकाली जावेला। इस आगे आशा सहयोगिनिया और स्वास्थ्य कर्मचारियों रे जरिए घर घर संपर्क कर और परामर्श सेवा दी जावेला। इबीचे जनसंख्या स्थायित्व रा मामला में बांसवाड़ा जिलो आखा राज्य में अव्वल रहो है। जिला रा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा बतायो कि जिला ने लगातार तीजी दफा आ उपलब्धि हासिल की है।

0: ਉਦਯੋਗ ਔਰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ 100 ਆਈਕਨਸ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਬਿਕਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 100 ਜਣਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਆਯੁਕਤ ਨੀਲਾਭ ਸਕਸੇਨਾ ਬਤਾਇਓ ਕਈ ਸਾਰੋ 15 ਅਗਸਤ ਤਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਾ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਹੈ। ਵੇ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਚੁਣੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਆਈਕਨਸ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਮਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮਾਰੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰੋ ਨਿਆਰਾ ਨਿਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਥੇ ਦਰਸਾਵ ਕਰਿਓ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਏ ਨੇਤੇ ਵਾਲਾ ਕਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੇਟ ਮਾਏ ਆ ਜਾਵਣ ਨੂੰ 3 ਜਣਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਵੇਖੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ SP ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਹੀ ਆਂ ਗਾਡੀਆਂ ਨੇ ਫੇਟ ਮਾਏ ਆ ਜਾਵਣ ਨੂੰ 2 ਜਣਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਫੇਕਿਆ। ਅਰਬ ਮੌਸਮ प्रदेश में अब करीब 1 सप्ताह ताई चौमासा री बिरखा थोड़ी कम पड़वा रा आसार है। हालांकि राज्य रा उगनी हल्का माए कच्चे कच्चे हल्कियों मझला दर्जा री बिरखा री संभावना है। इन दौरान कच्चे कच्चे छिटपुट बिरखा फै सके है। इन बीच हनुमानगढ़ जिला रा कई हल्का माए आज बिरखा फी पाली माए संवारे हुई बादला मंडिया रहा। दूजी कानी बाड़मेर माए आंधी चाली और सवाई माधोपुर समेत कई थोड़ा उमस रो असर रहो। कोटारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT रो 5वां दीक्षांत समारोह आज संस्थान रा परिसर में रखी चियो। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विद्यार्थियों ने BTech, MTech और PhD री उपाधियां देर नवाजा। इस मौके वे कहो कि विद्यार्थियों ने विकसित भारत बनावण रा लक्ष्य माए सक्रिय भागीदारी करण सागे देश बनावण माए ताकत लगावनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित किया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 मथे भेज सको हो। नंबर ओजू सुन ली राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आप 24 जुलाई ताई विचार भेज सको हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोयम्बटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रो उद्घाटन कीनो। इसा गई वह देश भर में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनावां री बेहतर निगरानी सारू राष्ट्रीय पोर्टल री शुरुआत कीनी। इस दौरान भी मीटिंग में इंसाना और जंगली जनावर रा टकराव न रोकण सारू नवी तकनीक और स्थानीय समुदाय री भागीदारी माथे जोर दियो चियो। बैठक में वह कहो कि देश री समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव विरासत न बचावण में वैज्ञानिक अनुसंधान रो खास काम है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरा माथे दोनों देशों बीच कारोबार निवेश और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करण रे बारे में चर्चा करी जावेला। मध्य प्रदेश रा गांधी सागर बंधाऊ कोटा बूंदी हल्का रा किसाना ने पाणत सारू पानी मिलेला। राजस्थान विधानसभा रा 75 साल पूरा भेवन रा सिलसिला माए 15 जुलाई ने खास आयोजन। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने शिरकत करेला। विश्व जनसंख्या दिवस काल मनायो जावेला। जन जागरूकता सप्ताह शुरू हैला और प्रदेश में चौमासा री बिरखा सुस्त पड़ी। करीब 1 सप्ताह ताई बिरखा कम भेवन री शंका। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM 90.8 पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

ब्रह्मजगत सुना फिर लो भाई ने सुबह रखा खड़ा और हम लोग बालो की ये वो खैर को मैं वहाँ जो चर्चा कर ही रहा हूँ कि बीज वो अपने पशुधन है और अपना विशेष अपने झरना सुना मौसम बदल रही है तो मौसम देखते आपको आप वहाँ पे पशुधन हो जो को बारिश के मौसम में उनकी है कि भाई कीचड़ भी ज़्यादा हो जाए और वो साथ साथ ये है कि भाई पानी में भी लट्टों भी जाओ से पशु वहाँ संख्या मिल जाए अपो आपने पशुधन ध्यान रखा रखा जो निराश से थे कोई पशु की है कि गली में घूमने वो जो अपन बराबर ध्यान रखा और कोशिश ये करनी है कि देखो भाई लोगों के भी जो अपने जो पर्यावरण जो नुकसान है प्लास्टिक हुए अपने पशु भी नुकसान आ गया धीरे धीरे तो प्लास्टिक नुकसान हो जाए क्यों तात्पर्य है कि जो पशु है उन खाणों वाणों को डाला तो प्लास्टिक थैली खुली फेंक नहीं डाला उन्हें या तो कोई कुंडी वूंडी में डाल के दो या कोई आप तगारी रखो तगारी में दो जैसे कि अपना पशु जो प्लास्टिक है गए आप पेट खराब करे या काल मृत्यु में हो जाए वो नहीं सके अभी देखो पशुओं और साथ कृषि और पशु दूसरे पूरक है आज की प्रतिस्पर्धा युग हर आदमी चाहिए कि थोड़ा पैसा होकर मिले तो अपो कृषि साथ अगर जो पशु अपने है उन्नत पशुधन तो अपने वास्ते फायदेमंद है क्यों तात्पर्य है कि भाई लोग देखो अगर जो पकौड़े बीस चार बकरे हैं बीस चार गोयें हैं खरीद बिलौनों कर खाटो भी जो ले लिया तो ठीक है लेकिन उन्नत पशुधन से की अपन रोकड़ पशु मिले बढ़िया ताजन बकरी और छोंग हुए गोयों हैं तो वो चुकी है दूध दही पनीर मक्खन तो ये की है कि बाजार में बिच आज की अपन शहर को पर्यटन क्षेत्र में थे तो अपन शहर में जैसे बेच रहे तो उसमें पे हाकर में थे और सीधी सी बात है भाई लोग जब पीछे पर हाथ में हुए नहीं तो आदमी के आत्मविश्वास बढ़ जाए फिर बीजी की ये उस और फायदा भी है कि अपने जो पशुधन है तो खेत में खड़ो करो सच है तो पौष्टिक आहार भी मिलते उन्हें आप वैसे घास भी उगा सकें पर पशु की देखभाल अपन बड़े सही ढंग से करनी है बड़ो सही होना चाहिए बाड़े में हवा होनी चाहिए बाड़े में किए कि जो कीचड़ का दौड़ है तो वो मैं सूखी मिट्टी डला दूँ हो सके तो बाड़े में सूखो रखो तो जिक्र किए पशु संक्रमित और समय समय माते टीकाकरण होना चाहिए पशुओं को तो छोटी छोटी चीज़ें है देखो मौसम हर मौसम में अपना आनंद लेना चाहिए चाहे आप हो चाहे कुछ लेकिन जाते साथ ऐसे कोई मौसम चल रहे हुए आने वाली बीमारी हो रही कि भी मक्खी भी उसे मच्छर भी उसे उल्टी दस्त और बुखार कई प्रकार बुखार है चाहे पशु हुए चाहे इंसान सब ने मौसम परिवर्तन हुई तो सीधे बस बीमारी हुई हुई लेकिन मौसम में आनंद लेते हुए अपन सावधानी बरतनी है उनसे फायदा भी लेना है जहाँ बारिश हो रही है तो वो जल्द संरक्षण कर सको जिकेन क्यों जल संरक्षण की हो घनी बार आप देखे थे कि भाई अपने डागले जो पानी है तो गलियों में बह रहे हुए पानी नालियों में जा रहे हो गंद हो रहे तो ये पानी तो छत्र पानी जो साफ छत्र है करी वो पानी रो पाइप एक लेके सीधे टोके में डालता हूँ नीचे टोके में पानी अपो इकटो कर लो और वही पानी ना पो आगे दिन चाहे मैं कोम लो चाहे पीण में भी ले जाओ मीठो पानी भी बारिश का पानी और अच्छो पानी है और साथ अगर जी आप कि तलाई भी जब पानी लो तो उन्होंने बाढ़ के कॉमन चाहिए यहाँ तो कहने को बारिश का पानी है नहीं क्योंकि मिट्टी कीटाणु वीटाणु बहुत ज़्यादा आ जाए करें तो पानी ने हमेशा छोड़ के ये उबाड़ के कॉम मिला बिकॉज और फसल अब कोई फल लाया हो सब्जी लाया हो तो अच्छी तरह धोए के उन्होंने कॉम मिला क्योंकि घना जो मौसम है बीमारी का मौसम है तो एक ही है कि अपना जितने ज्यादा अपने आस पास के भी पानी एकत्रित नहीं है खड्डा उतना खड्डा ने बूढ़ दो क्योंकि मच्छर उसे मक्खी उसे बीमारी उसे और छोटे मोटो अगर जुकाम खाँसी है तो डॉक्टर ने बताओ ना कि खुद डॉक्टर बनाओ तो ये पर ध्यान रखो आगे चर्चा जारी रखो पहले सुनो पहले सीख लोग भी

भैरखंडे टाइम बड़ी जेड़ लोग गीत सुनो और भैरव अब बात करता था कि भी आज की प्रतिस्पर्धा होगा हर आदमी चाहे कि भी कम समय में बढ़िया प्रयास कमाओ। तो कई बार की हुई कि अपन जरूर ज़्यादा अपने खेत में रासायनिक खाद उपयोग कराएं। अगर आप उन्नत पशुधन है जिक्र आप बात की हुई अगर खेत में गायों बकरे रिड जरी तो फसल चक्कर बनाओ, एक पास पशुधन और बीच पास फसल ले लो। तो उनको गोबर मींगनी उन्हें सड़ाए के कैचुआ खाद बनाए के वो अपन खाद रूप में कौन ले लो, एक बंद बे खाद जुदावी कि भाई दूध दही पनीर से अपना पैसों मिले मिले जैविक खाद जो को रासायनिक खाद से काफ़ी सस्ती और बाद की अपन जमीन वास्ते फायदेमंद और उसके साथ साथ अपन लागत कम जो को फसल पर बेचन जा सकते रुपया भी हकरा मिले तो अपन चौफे फायदे हो तो अपन कम ही क्यों करो रासायनिक खाद अपन उतो ही कम में लो जो कि

बाड़ी, नहर आई, नहर से देखो पेड़ पौधा होया, बारिश भी बड़ी है पिछले कुछ समय से देखो तो, नहर के साथ खेती बाड़ी शुरू हुई। और बात पड़े फुहारा पद्धति आई, बूंद बूंद सिंचाई, काफ़ी फायदों विकास की, जल की बचत, बिजली की बचत, और वो साथ साथ अपन पानी उतो ही देना जितनी उन्हें आवश्यकता है। बिजली भी की है पहले को, देखो आज की एक 10 जुलाई है, 10 जुलाई की एक वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्र दिवस मनाया करें, फिर कारण कि ईंधन की जो जीवाश्म या ईंधन जो निर्भरता है वो कम करनी, जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जेड़ा नवीनीकरण जो स्रोत है अपनाना, और इस साथ साथ आगे बढ़ना, जो कि कोयलो तेल गैस का उपयोग कम करना। भैया आज देखो थे सोलर लगाओ कितो फायदो है, छत मार लगाओ बिजली वो खुद बनाए रहे हो तो बिजली दे दो भाई, बगैर की पर्यावरण नुकसान पहुँचा है, लेकिन ग्रीन एनर्जी बोला करे आपको पहुँच सके। देखो जैसे हमें चौफे लागोड़े बगैर प्रदूषण है वो भी सौर ऊर्जा, मतलब देखो अगर देखो चारों को अपना आवरण नहीं उन्हें वो कई तरह से सुधार सकते, जल सू बिजली सू जितनी हो सके। देखो पानी और बिजली आवाज समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितो पचास है उतो फायदेमंद हो। पानी अस्त देखो शहर में कौन अंदाजों में पानी का दुरुपयोग कर रहा हूँ, कहीं बार तो देखिए सो नहर की नल आवे नहीं तो गली में पानी भी तोड़ गई, पानी बहुत कीमती है अपन पानी भी घनी बार देखिए अगर पानी लोग यहीं फालतू में देखो दुरुपयोग हो रहे उन्हें रोकना चाहिए, और पानी ने सही ढंग से अपना दुरुपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी अपन ढंग से ध्यान रखे। पानी है तो देखो अपना पशुधन भी है तो वास्ते भी पानी जो चाहिए अपन आस तो जितने अपन संचय करते हो तो अपन फायदा है। जल साइंस में देखो थोड़ा मैं कहूँ नहीं तो जल संरक्षण अपना बहुत फायदेमंद चीज़ है और वास्ते काफ़ी फायदेमंद, अच्छा आगे जारी रखो पहले थोड़ा सारा लोग भी।

0: नहीं कब से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो, भूल कभी तो हजार तोहफे आखिर क्यों लाते हो।
1: अपना नाम नहीं बताया आपने, कॉफी पीने चलेंगे।

0: आंखें न भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के है, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं है?
4: ग्रेट, मैं आ जाऊँ।
3: तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है।
4: बेचारी, मैं छोड़ आऊँ?

0: राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है, जिस चेहरे पर मरते हो वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: धड़के दिल बार बार।
1: अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में गाए गीत। इसके साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।
2: Mix my love with the wine. Give me the bottle of wine.

अभी आप सुन रहे थे जगजीत जी की आवाज में गाए गीत। इसके साथ ही हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं समाचार संध्या, जिसे हम रिले कर रहे हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।

की श्रृंखला जीती है और पहला मैच इस श्रृंखला का जो है बारिश के कारण रद्द हो गया था और अंतिम मुकाबला श्रृंखला का साउथहैम्पटन में कल खेला जाना है, जहां भारत की उम्मीदें होंगी कि अंतिम मुकाबले को जीत करके एक अच्छी शुरुआत दी जाए अपने T20 श्रृंखला की, जो कि 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में सौंपी गई है, जबकि सविता और बीचू देवी खरीबाम को गोलकीपर के तौर पर टीम में तैनात किया गया है। इशिता चौधरी, सुशीला चानू और ज्योति शिल्पी डवास, निकी प्रधान, साक्षी राणा, सलीमा टेटे, नेहा दीपिका सोरंग को टीम में मौका दिया गया है, जबकि बलजीत कौर और ऋषिका भी टीम का हिस्सा हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव और राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहाँ की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क

0: समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़

0: छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: Pineapple Festival का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानी सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad al-Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves coverage deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted, Kia Ora Modi, to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Bande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness the performance by the Nad Vocal Ensemble.

Take it back.

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज लगाएगी। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

छोड़ो उड़ा श्याम रे सजनी, उड़ा श्याम रे सजनी, जो थाने सेल्या चा पीड़ो ओम चो, जो थाने सेल्या

लड़ियो फुलरा श्यामा री सजनी, फुलरा श्यामा री सजनी, अब के थाने लिया गया पीड़ो ओम चो जो थाने से लिया।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है, मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिखूं। मेरा दिल कह रहा है, मैं तेरे सुर्ख लरसते होठों की नाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिखूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है, तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों की चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत है। मेरा दिल कह रहा है, तेरे उलझे गए सुसमन इन आंखों के आईने में मेरा दुल्हन सा रूप निहार, इस महकती जमीन की सेज पे अपने अरमानों की चाहत लिख दो, मोहब्बत लिख दो।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 11:05 पर सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड, 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। रात के 11 बजने हुए, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साई

0: वेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्यिक कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।